किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, पसीने से तर थक चुका था। पापा, ये जिंदगी तो बिल्कुल बेमतलब सी लगती है, रोज मेहनत, रोज पसीना और ऊपर से परेशानी भी। पिता मुस्कुराए और कहा, ठीक है, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो घर आए और पिता ने 3 चीजें टेबल पर रख दी, एक नींबू, एक गिलास पानी और थोड़ी चीनी। बोले, ये लो नींबू, काटो और पानी में निचोड़ दो, अब चीनी मिलाओ और पियो। लड़का थोड़ा चौंक गया, पर किया उसने। पिता ने कहा, अब बताओ कैसा लगा, शरबत बढ़िया है पापा। पिता मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, देखो बेटा, जिंदगी हर किसी को नींबू देती है, परेशानियां, मुश्किलें, तकलीफें, लेकिन उन नींबुओं से शरबत बनाना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर मुश्किल में चीनी ढूंढ सकते हो, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हौसला और मुस्कुराहट, तो जिंदगी हमेशा स्वादिष्ट लगेगी। तो इससे सीख हमें यही मिलती है कि मुसीबतें सबके हिस्से आती है, लेकिन जो मुस्कुरा कर उनका सामना करता है, वही जिंदगी का असली मजा चखता है। तो अगली बार जब जिंदगी नींबू दे, शरबत बनाओ और दूसरों को भी पिलाओ, और खुद भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। यही थी आज की कहानी का उद्देश्य कि जिंदगी में बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: आजकल एक लाइन ना तो बहुत कॉमन हो गई है, भाई डाइट करना है, एक काम करते कल से स्टार्ट कर दे। आप भी ऐसा ही करते हो ना, जानता हूं मैं यार। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। शुगर कम बोलने के बाद भी हम सीक्रेटली बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई में पूरे हिसाब से बराबर शुगर लेते हैं, और कहते कि यार डाइट करना है लेकिन कल से करूंगा। आपने ये भी सुना होगा, बस ये पिज्जा लास्ट है, ये गुलाब जामुन आखिरी है, मंडे से पक्का डाइट। यार एक तारीख से तो पक्का डाइट करूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि डाइट स्टार्ट करने का प्लान हम इतनी बार बनाते हैं कि लगता है प्लानिंग ही सच्ची एक्सरसाइज है। कभी बर्थडे आ गया, कभी किसी का फंक्शन आ गया, कभी दोस्त ने ट्रीट दे दिया, इस वजह से डाइट हमारा रह जाता है। और फिर हम खुद कन्विंस करते हैं, लाइफ तो एक ही बार मिलती है, कहाँ खाना कम कीजिएगा। वैसे बाय द वे दोस्तों, एक बात याद रखिए, डाइट का मतलब खाना कम करना ऐसा नहीं होता। डाइट का मतलब होता है खाना बैलेंस में खाना और प्रॉपर खाना। आप सिंपल कर सकते हो एक चीज, आज एक बिस्किट कम कर लिया, आज थोड़ा ज्यादा वॉक किया, आज कोल्ड ड्रिंक स्किप कर दी, आज शुगर थोड़ी कम खा ली, आज फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड किया। इसके जरिए ना तो आप आपका डाइट स्टार्ट कर सकते हो। एक बात याद रखिए, डाइट कल से स्टार्ट। तो एक काम कीजिए, कल का वेट मत कीजिए, आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि फिटनेस की जर्नी कल से नहीं अभी से शुरू होती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: Let's talk about mental health, क्योंकि mental health well तो जिंदगी all is well. You are listening MGM 90.8 FM. All is और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी. सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं. मैम, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए डेली स्ट्रेस मैनेज करने के सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है?
1: देखिए, पहली बात है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ कि पहले हमारे मेजर 3 टास्क जो है हमको वो प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले हमें वो खत्म करना है. हमें उन 3 चीजों पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए कि 3 चीजें मेरी काफी इम्पोर्टेंट है जिनमें से एक चीज नहीं हुई है, तो वो क्या होता है कि मेंटली एक बर्डन फील होता है हमको, और उस बर्डन की वजह से दूसरी चीजों में भी मन नहीं लगता, दूसरे काम भी ठीक से नहीं होते हैं. अब मान लीजिए जैसे हमारे मोबाइल में कोई एक ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला या ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला ऐप अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो तो हमारा मोबाइल का फंक्शन कैसे कम हो जाता है. सो सिमिलरली हमको वैसे मेजर रोज, दिस शुड बी अ डेली एक्सरसाइज कि ऑफिस में बैठ के पहले 3 प्रायोरिटाइज करें काम और वो पहले खत्म करें. फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर 1.5 घंटे बाद अगर हम 5 मिनट का ब्रेक लें, कि जैसे एक ग्लास पानी पी लिया, 50 कदम हमने वॉक कर लिया ऑफिस में, है ना, विदाउट मोबाइल, तो थोड़ा 5 मिनट वॉकिंग और थोड़ा पानी पीना इज बेटर, तो वो हमको फिर से फ्रेश बना देता है एंड देन अगेन वी आर रेडी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर से नेक्स्ट 90 मिनट्स. तो ये 2 चीजें तो मैं खुद भी काफी इंप्लीमेंट करती हूँ और मेरा तो रिजल्ट काफी अच्छा मैंने महसूस किया है, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं.
0: So, आप अपना स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करते हो तो ये टिप्स आप यूज कीजिएगा और फायदा तो आपको होगा ही. सो याद रखिए ये टिप्स, और भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और सुनते रहिए.

फरमाइश आपकी फरमाइशें पूरी करना मेरा अधिकार है, मेरा काम है। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है। All is well. RJ अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM। और इस सेगमेंट में मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि इसके अंदर मेरा और आपका इंटरेक्शन होता है। सो आज की गाने की फरमाइश आई है ज्योत्सना देशमुख जी की तरफ से इस गाने के लिए।

वाह क्या गाना है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बचपन में ना तो ये गाने के साथ मेरी ऐसी याद है कि यार मेरे दादाजी को ये गाना बहुत पसंद था, और अक्सर ना रेडियो पर जब ये गाना प्ले होता था तो फुल वॉल्यूम में वो गाना एंजॉय करते थे। तब तो ये गाना समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गए तब ये गाने की लिरिक्स समझ में आने लगी। तो फिलहाल ज्योत्सना जी की फरमाइश पर ये गाना हम प्ले करते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इट्स व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर फिर से दोहराता हूँ 9359320080। बिंदास फरमाइश कीजिएगा, यहाँ पर आपकी फरमाइशें पूरी होती है। और सुनते रहिएगा

है। और एक बात मैंने नोटिस की रेलवे स्टेशन के ऊपर कि उन जगहों पर ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पर ना उस शहर में जो जो टूरिस्ट प्लेस है किस तरीके से वहाँ पर आप जा सकते हैं, पैकेज क्या है, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सवाल एक उठता है कि यार अपना छत्रपति संभाजीनगर पर्यटनाची राजधानी अपन असं म्हणतो त्याला, आपल्या शहरात 52 दरवाजे आहेत, 52 पुऱ्याचं आपलं शहर आहे, इतका मोठा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला लाभलेला आहे, पण टुरिझम डिपार्टमेंट कडून एकही मदत केंद्र ना बस स्टँडवर आहे ना रेल्वे स्टेशनवर आहे। तर अशा प्रकारचे मदत केंद्र इन्फॉर्मेशन डेस्क आपल्या शहरातील बस स्टॉपवर रेल्वे स्टेशनवर तयार झाले तर जे पर्यटक आहेत ना त्यांची गैरसोय होणार नाहीये, क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती किस तरीके से किस जगह पर कैसे जाया जाए, तो वो रिक्शे वाले को पूछते हैं, टैक्सी वाले को पूछते हैं, और टैक्सी और रिक्शे वाले ना तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू किया है बिजनेस वाला उन्होंने, मतलब कोई नया इंसान देखा उसको कहीं घुमाना है तो लोकल के अंदर तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपए तक का भाड़ा वसूल करते हैं, एंड अगर आउट ऑफ सिटी जाना है, अजिंठा एलोरा जाना है तो 6,000-7,000 या कोई कोई 8,000 रुपए भी वसूल करता है टूरिस्ट से, और वो टूरिस्ट नए अपने शहर में होते उन्हें इतना पता नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से उनसे लूट शुरू है। तो सवाल ये उठता है यार अपने शहर में भी इतना बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क या तो फिर इन्फॉर्मेशन डेस्क अपने शहर में शुरू कर देना चाहिए, फिर चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ताकि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो वो प्रॉपर प्लान कर सके कहां किस तरीके से घूमना है और उन्हें प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी सिटीज में मैंने देखा वैसे अपने शहर में भी हो सकता है, पर कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जवाब मिलेगा बताऊंगा जरूर। अगर आप मौसम शुरू है घूमने का तो आप भी जरा घूम कर आइएगा, और बाकी तो सुनते रहिएगा।

0: आपको बैठे बैठे अपने गाड़ी के साथ साथ अपने खुद की भी सर्विस करवानी है ना, तो अपने शहर के रास्तों से जरा घूम कर आइएगा, फ्री में मसाज आपको मिलने ही वाला है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में बरसात शुरू है, बहुत अच्छा माहौल है, और इस दरमियान ना तो अपने शहर में जो गड्ढे हैं तो उसका एक आप अच्छे से यूज कर सकते हो मसाज थेरेपी के लिए। इसके साथ पीठ का जो दर्द है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये मसाज जो है ना ऑटोमेटिक वाली है, इसमें समझ भी नहीं आता कि कितना प्रेशर आपको डालना है और किस तरीके से डालना है। बाकी तो आपकी हड्डी न हड्डी जवाब देकर कहेंगी, भाई बस भी कर, एक दिन में इतनी मसाज नहीं चाहिए मुझे। अब इसका मजा आप कहां ले सकते हो, अपने शहर के रास्तों पर निकलिए भाई। सबसे पहले देखो, आप ना मोंडाना का ब्रिज के नीचे से गुजर रहे होगे तो वहां पर भी आपको ये मसाज मिल सकती है और ब्रिज के ऊपर भी मिल सकती है। इसी के साथ क्रांति चौक, इतना बेहतरीन अपना चौक है, वहां पर पूरा ट्रैफिक होता है, तो उस एरिया में भी आपको ये मसाज फ्री में मिल सकती है। एंड रही बात सिडको वाले सिग्नल के पास की, वहां पर भी आपको मसाज मिल सकती है। एंड गजानन महाराज मंदिर की ओर आप जा रहे हो तो वहां पर भी आपको ये मसाज मिल सकती है। और शहर कैसे मेन मेन एरिया से जहाँ पर आपको फ्री में मसाज अवेलेबल है। और बाकी तो शाहगंज में ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये मसाज का पैकेज आपको मिल सकता है। तो फ्री की मसाज चाहिए तो अपने शहर के गड्ढों से गाड़ी चलाइएगा और पूरी बॉडी को ऐसा रिलैक्स फील करवाइएगा। बाकी आप कुछ लोग कहेंगे कि यार अपने शहर में कितने गड्ढे है, गड्ढा एक भी नहीं अपने शहर में, दैट्स कॉल्ड मसाज थेरेपी। महानगर पालिका को हमारी फिक्र है, इस वजह से उन्होंने तैयार की है। और कहते हैं कि महानगर पालिका काम नहीं करती, कितना हमारे हेल्थ का ख्याल रख रही है ये, और कितना काम करना चाहिए उन्होंने। सैल्यूट टू महानगर पालिका भाई, ऐसे गड्ढे बनाते रहिएगा और आम आदमी की जिंदगी खराब करते रहिएगा। और एंजॉय करते हैं गड्ढों वाला मौसम एंड सुनते हैं आरजे अदनान के साथ।
1: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: तेरा मुझे

शिवाजी नगर अंडरपास जब से तैयार हुआ है तब से उसके पीछे बैड लक लगाई है यार, कुछ ना कुछ काम निकलता ही है। हेलो, मैं सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। हर दिन कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करता है ये अंडरपास, और यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और बारिश की वजह से तो दिन दुगनी और रात चौगनी समस्या इसमें शुरू हो रही है। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा था कीचड़ का, इतना कीचड़ जमा हो रहा था कि हर दिन 3 से 4 टू व्हीलर्स वहाँ पर स्लिप हो रहे थे, लोग जख्मी हो रहे थे। इसी के साथ टिप टिप पानी आसमान से बरस रहा है और पानी लीकेज हो रहा है इस अंडरपास रोड से, म्हणजे भुयानी महामार्गामधून पानी लीकेज सुरू आहे। आणि यावर आतापर्यंत प्रशासनाने 50,000 रुपयांहून जास्त खर्च केलाय ही पाण्याची गळती थांबावी, पण ही पाण्याची गळती थांबतच नाहीये, काही ना काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतच आहे। आणि यावर आता प्रशासन डोक्याला हात लावून बसलंय की आता कसं करावं, हे काय झालंय आणि असं कसं काम केलंय आम्ही, हे आता ते स्वतःला प्रश्न विचारतायत। पूछना भी चाहिए भाई, क्योंकि तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा इस प्रोजेक्ट को लगा था, और उसके बाद हर साल हर दिन ऐसे प्रॉब्लम इसमें फेस करना पड़ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि जैसी बारिश रुकेंगी हम काम फिर से शुरू करेंगे। सवाल ये उठता है, जब बारिश नहीं थी तब आपने काम क्यों नहीं किया? जब वक्त था काम करने का तब तो आप नींद ले रहे थे शायद से, अब बारिश आ रही है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं यार बारिश रुकने के बाद थोड़ा हम काम करेंगे। करते हैं भाई आप काम, बहुत अच्छा करते हैं, देखते आ रहे हम जब, देखते किस तरीके से अब ये प्रशासन काम करेगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस एक बात याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा बारिश चालू है मैं अंडर पास से गुजरूंगा बारिश मुझे नहीं लगेंगी, तो आप नीचे जाने के बाद भी भीग जाओगे क्योंकि लीकेज शुरू ही है। सो बी केयरफुल और गाड़ी जरा आहिस्ता से चलाइए और बाकी एंजॉय कीजिएगा। आरजे अदनान के साथ ऑल इज वेल।

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844-44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 or 7017

0: जवाब क्या दूंगा
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, हाय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

शायद नहीं भैया, यही तो प्यार होता है, समझे। एग्जैक्टली 10:42 का वक्त हो चुका है और आरजी अदनान आपके साथ आ गया है। आपकी मॉर्निंग तो गुड हो गई होगी। एंड आज क्या है, वीकेंड का बाद शनिवार है और प्लान तो आपके बहुत सारे हो गए, घूमने फिरने का भी प्लान होगा, इसी के साथ फिल्म देखने का तो आपका प्लान है ही। एंड मुझे पता है आज आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। जी हाँ, मैं भी ना मकड़ी वाला आदमी का नया दिन ये फिल्म देखने ही वाला हो। तो अब बाकी लोग यार, एक बात मुझे उन लोगों से बहुत दिक्कत है और गुस्सा भी आ रहा है, जो लोग ना जा रहे हैं फिल्म देखने और जो क्लाइमैक्स सीन है, कुछ अंदर का सीक्रेट है, कुछ एक्साइटमेंट वाले सीन स्टोरी पर लगा रहे, भाई क्यों भाई। हम जैसे लोगों का भी मूवी देखना बाकी है, हमारी एक्साइटमेंट कम मत करो। और चल जब स्पॉइलर तो बिल्कुल मत दो यार, लेकिन आदत होती है, और उन दोस्तों से थोड़ा बच के रहिएगा जो कि पूरी फिल्म आपको स्नैपचैट के ऊपर दिखाई देंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे और स्पॉइलर भी आपको दिखाएंगे। तो बाकी फिल्म देखने के बाद ज़रूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी, मैं भी देखने वाला हूँ। बट आज का टिकट मिल ही नहीं रहा है भाई, सब हाउसफुल शो है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आप जा रहे हो ना, बताइए ज़रूर देखने के बाद फिल्म आपको कैसी लगी। फिलहाल एंजॉय करते बढ़िया सा सुपर डुपर हिट गाना बम बम बोले मस्ती में ढोले विद आरजी अदनान इन द शो ऑल इज़ वेल।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तो बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM
3: साथ है तो बात है।
4: टूटा टूटा

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़, हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय दिन का सबसे सुकून भरा समय होता है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब सूरज ढलता है तो मन भी थोड़ा ठहरना चाहता है। यही वक्त है अपने परिवार के साथ बैठने का, दोस्तों से बातें करने का और खुद को थोड़ा समय देने का। तो अगर आप अभी सफर में हैं, घर लौट रहे हैं या अपने घर में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, हम हैं आपके साथ। अगले कुछ मिनटों में सुनिए ऐसे शानदार गाने जो आपकी इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बना देगा। तो यार आज तो है सैटरडे एंड ऑफ कोर्स यार ये सैटरडे ना अलग ही फीलिंग देता है, क्योंकि पता होता है अगले दिन कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है। वैसे यार आराम करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हम आराम करेंगे तो हम खुद को रिचार्ज करेंगे, और अगर हम खुद को रिचार्ज करेंगे तो आने वाले काम और भी बेहतर हो जाएंगे। तो यार मतलब ये मत समझना कि सैटरडे है तो आराम ही करोगे, कुछ अच्छा काम भी करो, कुछ अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश करो एंड ऑफ कोर्स सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि ये शाम है आपकी और बातें भी आपकी। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अगले शानदार गानों की ओर, ओनली ऑन एमजे 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन एक छोटी सी सलाह है, अपनी किताबें कभी उल्टी तरफ मत पढ़िए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आखिरी पन्ने से शुरुआत करेंगे तो कहानी का मजा ही खत्म हो जाएगा। हर किताब का अपना एक सफर होता है, शुरुआत, बीच और फिर एक खूबसूरत अंत। जब हम सही क्रम में पढ़ते हैं तभी हर पन्ना कुछ नया सिखाता है और हर मोड एक्साइटमेंट से भर देता है। वैसे ये बात सिर्फ किताबों पर ही नहीं बल्कि जिंदगी पर भी लागू होती है। हर काम का अपना समय होता है, अगर हम पेशेंस रखें और एक एक कदम आगे बढ़े तो मंजिल तक पहुंचना भी आसान होता है। तो आज अगर आपके पास कोई किताब है तो उसे पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कीजिए। एंड मैं किताब से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब, मेरा मतलब है जिंदगी भी। अपने पास्ट को इतना रिवाइंड मत करो, फ्यूचर की ओर ध्यान दो, क्योंकि पास्ट को आप संभाल तो नहीं सकते लेकिन फ्यूचर को आप संभाल सकते हो। पास्ट से सिर्फ सीख लेनी चाहिए और फ्यूचर पे उसे अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात मिल जाए जो आपका दिन और भी खूबसूरत बना दे। तो फिर अपनी किताबें सही तरीके से पढ़ो, हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात मिल जाए जो आपका दिन और भी खूबसूरत बना दे। फिलहाल अब वक्त हो गया है अगले शानदार गाने का। आप मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ

रहे है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हमारी पुरानी परंपराओं में तांबे के बर्तन में पानी रखने और पीने की सलाह दी जाती थी। आज भी बहुत से लोग इसे अपनी रोज की आदत का हिस्सा बनाते हैं। कहा जाता है कि रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीने से शरीर को थोड़ी मात्रा में तांबा मिलता है, जो एक जरूरी खनिज है। ये शरीर के कई सामान्य कामों में मदद करता है। साथ ही तांबे में ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो कुछ प्रकार के कीटाणुओं की संख्या कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, हर चीज की तरह तांबे का इस्तेमाल भी संतुलित होना चाहिए। बहुत ज्यादा या गलत तरीके से तांबे का पानी पीना सही नहीं माना जाता, इसलिए साफ तांबे के बर्तन का ही इस्तेमाल करें और संतुलित मात्रा में ही पिए पानी। सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे पानी किसी भी बर्तन में रखा हो, दिन भर पर्याप्त पानी पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। करीबन 2 से 2.5 लीटर पानी रोज आपको पीना ही चाहिए अच्छी सेहत के लिए। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए और मुस्कुराते रहिए। अब बढ़ते हैं अगले खूबसूरत गाने की ओर, जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? बातें। जी हाँ, जब दो लोग दिल से एक दूसरे की सुनते हैं और समझते हैं तभी रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। कभी हम अपनी बात कहते हैं, कभी सामने वाले की सुनते हैं। छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कान और थोड़ा सा प्यार, यही रिश्तों को खास बनाता है। कुछ एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है ये अगला गीत, जिसका नाम है कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है। एब्सोल्युटली यार, कुछ मूवीज ना बहुत ही अमेजिंग होती है और उनका जादू कई सालों तक रहता है। उन्हीं में से ये मूवी एक है जो कि डायरेक्ट की है यश चोपड़ा जी ने। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन ये मूवी हमें हमेशा उनकी याद दिलाएगी। वेल यार, ये गाना भी बहुत ही अमेजिंग है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि प्यार में सिर्फ बोलना ही नहीं सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। तो अगर आपके दिल में भी किसी अपने के लिए कोई बात है तो आज जरूर कहिए। हो सकता है आपकी एक प्यारी सी बात किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। ये बात आप अपने फ्रेंड को, आप अपनी मम्मी को, पापा को या फिर किसी अच्छे से दोस्त को भी कह सकते हो। दोस्त से मेरा मतलब आप समझ ही जाओ। और अब कोई बात नहीं यार, चलिए अब बिना देर किए सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने जो अपनापन और खूबसूरत एहसासों से भरे होंगे। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी फेवरेट सॉन्ग। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हमें बेकार लगती है वही किसी काम की भी बन सकती है। पुरानी बोतल से सुंदर फूलदान बन सकता है, पुराने डिब्बे से पेंट स्टैंड या पुराने कपड़ों से खरीदारी का बैग। थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी मेहनत से बेकार चीजों को नया रूप दिया जा सकता है। इसे ही कहते हैं बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ऐसा करने से न सिर्फ घर की बेकार चीजों का सही उपयोग होता है बल्कि कचरा भी कम होता है और पर्यावरण की रक्षा में भी हम मदद करते हैं। साथ ही ये एक मजेदार और रचनात्मक आदत भी है जिसे बच्चे और बड़े मिलकर अपना सकते हैं। तो अगली बार किसी चीज को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या इससे कुछ नया और काम का बनाया जा सकता है। एक छोटी सी कोशिश हमारे घर को भी सुंदर बना सकती है और हमारी धरती को भी थोड़ा साफ रख सकती है। तो वेल, अगर आप कुछ वेस्ट में से बेस्ट बना रहे हो तो जरूर बनाइए, उसका वीडियो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे इंस्टा पे टैग कीजिए। हमारी इंस्टा आईडी है MGM90.8FM। और अगर हमें पसंद आया तो हम आपको मौका देंगे हमारी रेडियो पे बात करने का। एंड ऑफ कोर्स आप कहीं मत जाइए, इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MGM90.8FM। साथ है तो बात है।

0: नवे तर फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनायचे
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग AIML डेटा सायन्स बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट MNC कोलॅबोरेशन्स इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स
0: लिमिटेड सीट्स आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7844।
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट को छत्रपती संभाजीनगर।
3: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
4: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल, शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
5: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वेल आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जिसे हमारे घरों में वर्षों से अपनाया जाता रहा है और मैं बात कर रही हूँ फास्टिंग की, वो भी वंस इन अ वीक। हफ्ते में एक बार फास्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। बहुत से लोग मानते हैं कि सप्ताह में एक दिन का हल्का भोजन करने या व्रत रखने से शरीर को थोड़ा आराम मिलता है। इस दौरान लोग तली भुनी चीजों से बचते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और फल या हल्का भोजन लेते हैं। इससे खाने की आदतों पर ध्यान देने का भी मौका मिलता है, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, व्रत हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। अगर आपको कोई बीमारी है, आप गर्भवती है, बुजुर्ग है या डॉक्टर ने मना किया है तो बिना सलाह के उपवास नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत का सबसे बड़ा मंत्र है संतुलित भोजन, रोज थोड़ा व्यायाम, भरपूर पानी और अच्छी नींद। अगर आप व्रत रखते हैं तो उसे सही तरीके से और अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ही रखें। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। अब वक्त आ गया है कुछ अमेजिंग गाने सुनने का। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
2: जी,
1: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हो? एज इन कोई अफेयर हो? और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो?
3: एहसास की जो जुबान बन गए।
2: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। पूरा हफ्ता काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में निकल जाता है, ऐसे में वीकेंड एक सुनहरा मौका लेकर आता है थोड़ा आराम करने का, अपने लोगों के साथ समय बिताने का और खुद के लिए कुछ पल निकालने का। तो क्यों ना इस वीकेंड की थोड़ी सी प्लानिंग अभी से कर ली जाए। आप परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते है या फिर घर पर ही कुछ नया बनाकर सबके साथ उसका मजा ले सकते हैं। अगर बाहर जाने का मन ना हो तो घर पर आराम करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी अपने मन और शरीर को थोड़ा आराम देना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, वीकेंड सिर्फ छुट्टी का नाम नहीं है बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ आने वाला हफ्ते की तैयारी करने का भी समय है। तो इस वीकेंड कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आए और मन खुश हो जाए। अब मुस्कुराते रहिए और तैयार हो जाइए अगले शानदार गाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते ही देखते शनिवार भी अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे अभी तो वीकेंड शुरू हुआ था और अब कहने का समय आ गया है गुड बाय सैटरडे। शनिवार अपने साथ थोड़ा आराम, थोड़ी मस्ती और अपनों के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पल लेकर आता है। किसी ने परिवार के साथ समय बिताया होगा, किसी ने दोस्तों से मुलाकात की होगी, तो किसी ने बस आराम करके खुद को तरोताजा किया होगा। लेकिन हर अच्छे दिन की तरह शनिवार भी अलविदा कहता है और हमें याद दिलाता है कि हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। अगर इस शनिवार आपकी कोई बात अधूरी रह गई हो तो चिंता मत कीजिए, आने वाला रविवार भी आपके लिए नई खुशी और नए मौके लेकर आएगा। तो इस खूबसूरत शनिवार को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा कहिए और आने वाले दिन का स्वागत पूरे दिल से कीजिए। फिलहाल हम सुनते हैं एक शानदार गाना, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एमजीएम यूनिवर्सिटीज जेएनईसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवीनंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या School of Legal Studies and Research, MGM University. To visit mgmu.ac.in.
4: Pharmacy मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या Department of Pharmaceutical Science मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे Diploma in Pharmacy and Bachelor of Pharmacy मध्ये admission सुरू। Also direct admission in B-Pharmacy second year. Avail attractive scholarships.
5: अत्याधुनिक अशी laboratory, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM campus. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission contact 93717 14265 or visit www.mgmu.ac.in.

मुझे लगता है कि वक्त से वक्त निकाल करना तो इंसान ने कहीं ना कहीं घूमकर आना ही चाहिए ताकि थोड़ा ब्रेक मिल सके। हेलो मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मैं भी कुछ दिन पहले जयपुर गया था, इसके बाद फिर हैदराबाद गया था, ऐसे टूरिस्ट प्लेस गया था जहां पर बहुत अच्छे माहौल देखने को मजा आता है। और एक बात मैंने नोटिस की रेलवे स्टेशन के ऊपर कि उन जगहों पर ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेस्क बनाया गया है जहां पर ना उस शहर में जो जो टूरिस्ट प्लेस है किस तरीके से वहां पर आप जा सकते हैं, पैकेज क्या है, इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सवाल एक उठता है कि यार अपना छत्रपति

संभाजीनगर पर्यटनाची राजधानी आपण असं म्हणतो त्याला. आपल्या शहरात 52 दरवाजे आहेत, 52 पुऱ्याचं आपलं शहर आहे, इतका मोठा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला लाभलेला आहे. पण टुरिझम डिपार्टमेंट कडून एकही मदत केंद्र ना बस स्टँडवर आहे ना रेल्वे स्टेशनवर आहे. तर अशा प्रकारचे मदत केंद्र इन्फॉर्मेशन डेस्क आपल्या शहरातील बस स्टॉपवर रेल्वे स्टेशनवर तयार झाले तर जे पर्यटक आहेत ना त्यांची गैरसोय होणार नाहीये. क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती किस तरीके से किस जगह पर कैसे जाया जाए, तो वो रिक्शे वाले को पूछते हैं, टैक्सी वाले को पूछते हैं. और टैक्सी और रिक्शे वाले ना तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू किया है बिजनेस वाला उन्होंने. मतलब कोई नया इंसान दिखा उसको कहीं घुमाना है तो लोकल के अंदर तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपए तक का भाड़ा वसूल करते हैं. एंड अगर आउट ऑफ सिटी जाना है, अजिंठा एलोरा जाना है, तो 6,000-7,000 या कोई कोई 8,000 रुपए भी वसूल करता है टूरिस्ट से. और वो टूरिस्ट नए अपने शहर में होते उन्हें इतना पता नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से उनसे लूट शुरू है. तो सवाल ये उठता है यार, अपने शहर में भी इतना बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क या तो फिर इन्फॉर्मेशन डेस्क अपने शहर में शुरू कर देना चाहिए, फिर चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ताकि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो वो प्रॉपर प्लान कर सके कहां किस तरीके से घूमना है और उन्हें प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके. बाकी सिटीज में मैंने देखा वैसा अपने शहर में भी हो सकता है, पर कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है. जवाब मिलेगा बताऊंगा जरूर. अगर आप मौसम शुरू है घूमने का तो आप भी जरा घूम कर आइएगा. और बाकी तो सुनते रहिएगा.

0: डॉक्टर इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Kochitrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shiknyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 950-308-2913.

0: पवन कर शोर,
1: पवन कर शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन कर शोर,
0: हाँ

आपको बैठे बैठे अपने गाड़ी के साथ साथ अपने खुद की भी सर्विस करवानी है ना, तो अपने शहर के रास्तों से जरा घूम कर आइएगा, फ्री में मसाज आपको मिलने ही वाला है। हेलो, माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में बरसात शुरू है, बहुत अच्छा माहौल है, और इस दरमियान ना तो अपने शहर में जो गड्ढे हैं तो उसका एक आप अच्छे से यूज कर सकते हो मसाज थेरेपी के लिए। इसके साथ पीठ का जो दर्द है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये मसाज जो है ना ऑटोमेटिक वाली है, इसमें समझ में नहीं आता कि कितना प्रेशर आपको डालना है और किस तरीके से डालना है। बाकी तो आपकी हड्डी न हड्डी जवाब देकर कहेंगी, भाई बस भी कर, एक दिन में इतनी मसाज नहीं चाहिए मुझे। अब इसका मजा आप कहां ले सकते हो, अपने शहर के रास्तों पर निकले भाई। सबसे पहले देखो, आप ना मोंडाना का ब्रिज के नीचे से गुजर रहे होगे तो वहां पर भी आपको ये मसाज मिल सकती है और ब्रिज के ऊपर भी मिल सकती है। इसी के साथ क्रांति चौक, इतना बेहतरीन अपना चौक है, वहां पर पूरा ट्रैफिक होता है, तो उस एरिया में भी आपको ये मसाज फ्री में मिल सकती है। एंड रही बात सिडको वाले सिग्नल के पास की, वहां पर भी आपको ये मसाज मिल सकती है। एंड गजानन महाराज मंदिर की ओर आप जा रहे हो तो वहां पर भी आपको ये मसाज मिल सकती है। और शहर कैसे मेन एरिया से जहाँ पर आपको फ्री में मसाज अवेलेबल है। और बाकी तो शाहगंज में ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से कि मसाज का पैकेज आपको मिल सकता है। तो फ्री की मसाज चाहिए तो अपने शहर के गड्ढों से गाड़ी चलाइएगा और पूरी बॉडी को ऐसा रिलैक्स फील करवाइएगा। बाकी आप कुछ लोग कहेंगे कि यार अपने शहर में कितने गड्ढे है, गड्ढा एक भी नहीं अपने शहर में, दैट्स कॉल्ड मसाज थेरेपी। महानगर पालिका को हमारी फिक्र है, इस वजह से उन्होंने तैयार की है। और कहते हैं कि महानगर पालिका काम नहीं करती, कितना हमारे हेल्थ का ख्याल रख रही है ये, और कितना काम करना चाहिए उन्होंने। सैल्यूट टू महानगर पालिका भाई, ऐसे गड्ढे बनाते रहिएगा और आम आदमी की जिंदगी खराब करते रहिएगा। और एंजॉय करते गड्ढों वाला मौसम। एंड सुनते हैं आरजे अदनान की।

0: अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप मिल जाता है। कहना अनुराधा,
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु, अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
2: क्या

शिवाजी नगर अंडरपास जब से तैयार हुआ तब से उसके पीछे बैड लक लगाई है यार, कुछ ना कुछ काम निकलता ही है। हेलो, मैं सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। हर दिन कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करता है ये अंडरपास, और यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और बारिश की वजह से तो दिन दुगने और रात चौगनी समस्या इसमें शुरू हो रही है। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा था कीचड़ का, इतना कीचड़ जमा हो रहा था कि हर दिन 3 से 4 टू व्हीलर्स वहाँ पर स्लिप हो रहे थे, लोग जख्मी हो रहे थे। इसी के साथ टिप टिप पानी आसमान से बरस रहा है और पानी लीकेज हो रहा है इस अंडरपास रोड से, म्हणजे भुयानी महामार्गामधून पानी लीकेज सुरू आहे। आणि यावर आतापर्यंत प्रशासनाने 50,000 रुपयांहून जास्त खर्च केलाय ही पाण्याची गळती थांबावी, पण ही पाण्याची गळती थांबतच नाहीये, काही ना काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतच आहे। आणि यावर आता प्रशासन डोक्याला हात लावून बसलंय की आता कसं करावं, हे काय झालंय आणि असं कसं काम केलंय आम्ही, हे आता ते स्वतःला प्रश्न विचारतायत। पूछना भी चाहिए भाई, क्योंकि तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा इस प्रोजेक्ट को लगा था और उसके बाद हर साल हर दिन ऐसे प्रॉब्लम इसमें फेस करना पड़ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि जैसी बारिश रुकेंगी हम काम फिर से शुरू करेंगे। सवाल ये होता है, जब बारिश नहीं थी तब आपने काम क्यों नहीं किया? जब वक्त था काम करने का तब तो आप नींद ले रहे थे शायद से, अब बारिश आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं यार बारिश रुकने के बाद थोड़ा हम काम करेंगे। करते हैं भाई आप काम, बहुत अच्छा करते हैं, देखते आ रहे हम, जब देखते किस तरीके से अब ये प्रशासन काम करेगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस एक बात याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा बारिश चालू है मैं अंडर पास से गुजरूंगा बारिश मुझे नहीं लगेंगी, तो आप नीचे जाने के बाद भी भीग जाओगे क्योंकि लीकेज शुरू ही है। सो बी केयरफुल और गाड़ी जरा आहिस्ता से चलाइए और बाकी एंजॉय कीजिएगा। आरजे अदनान के साथ ऑल इज वेल।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जाना नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम या खैर जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: बाज बनी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: यही
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दंगा, रबर के बाहों में कद्दू तो भूल जाए हुड़दंगा, रे फिर देख देख
1: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर,
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM